गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और आदाब टू ऑल आवर वंडरफुल लिसनर्स ट्यूनिंग इन टू WVKR 91.3 FM, एन इंडिपेंडेंट रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम वैसर कॉलेज पिकिप्सी न्यूयॉर्क. यू आर लिसनिंग टू गीत माला, योर फेवरेट शो ब्रिंगिंग सुर संगीत एंड टाइमलेस मेलोडीज टू ब्राइटन योर डे. आप सुन रहे हैं गीतमाला, जहां पुरानी यादों के नगमे और नए जमाने के सुर मिलते हैं. यू कैन लिसन टू अस ऑनलाइन एट wvkr.org और थ्रू द ट्यून इन ऐप बाय सर्चिंग फॉर WVKR गीतमाला. फॉर सॉन्ग रिक्वेस्ट और कमेंट्स, फील फ्री टू कॉल अस एट 845-437-7178. हमें आपके कॉल्स का हमेशा इंतजार रहेगा. आई एम योर होस्ट प्रीता, हियर टू ब्रिंग यू सोलफुल सॉन्ग्स एंड एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस टू मेक योर मॉर्निंग ट्रूली स्पेशल.